तहीं प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर दिखे पौलयो। तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साह जिहड़ा अंबाले के नज़दीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हां, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछया, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी एहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। ये तो एहो जी बख्शिश हो जाए। पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन। तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउण दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई भी

मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत।

पंजवां काहे रे मन चित वह उद्दम या आहर हर जीव परया शैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की तरिया सिर सिर रिजक।

तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतोह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समाना।

आपे भुगता जी। हाँ तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी। तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेव है जो सेव है तुद जी। जन नानक तिन कुरबाणा, हर त्याव है हर त्याव है तुद जी। जन ना जे हर त्याव है हर त्याव है तुद जी। से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त भई जिन हर त्याया जी। तिन टूटी जम की फासी,

जी तू ने चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सोई तुदे आपे सृष्ट सब पाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा।

मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब हुए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर करवे कह जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट हुए आसा महला पहला तेत सर्वरण।

रहाओ। जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधु न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौकई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु, आप हाथ दे मुहे बचाबहु, सुखी बसै मोरु परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन कौ आस धरिए, पूर्ण हुए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें चाट कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा।

ज्ञान के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूठियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा।

काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताकि ताप तनक मह हरिहु। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब हुई, दुष्ट चाह चव सकै न कोई।

मत एक न मान्यू, सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यू। श्री असुपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहू सब तू हे बखान्यू। दोहरा

क्या नहीं कर तीरे। करता तीरे सब किछ है जिस देही सुपावे। सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तीरे। साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहु। जिस दिया इह वडियाइया कह नानक सुनहु संतहु। शब्द धरहु प्यारू साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विश्व।

ज्ञानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र

श्लोक महल्ला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाउ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाउ सतगुर से तीरते आओ।

मनहु ना विसारेनु। साध जना कै संग पव जल तारेन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारेन। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे, जिस सिमरत सुख होए।

0: जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर
1: तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में कोई ना जाने। तुमरा अंत उचे तेऊ,

0: सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम।

मालूम थे चरणों अरदास बेनती मैं तान दिवान तो है मेरे स्वामी मैं तुदागे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पे करो बेनती मेरा दुख सुख तुझे ही पासे सो इनिक सेवा प्रवान कुनी हुई है बुला चुका दिखी मगनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरवण करिए गुरु कर दे वजीर सत्कार योग्य नवनीत सिंह जी उन्हां पासो तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की चल रही गुरबाणी की लड़ीवार विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए दस लो फतेह प्रवान करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की

विच्छ जाए विकार। पौड़ी एक जैनी उजड़ पाए तुरहों खुआया तिन मुख नाही नाम न तीरथ नाया हथी सिर खुहाए न पद कराया कुचल रह दिन रात शब्द न पाया।

जूठा खाया बिन शब्द आचार न के नहीं पाया। गुरमुख ओंकार सच समाया बिन शब्द आचार न के नहीं पाया। गुरमुख ओंकार

जी सतनाम श्री वाहिगुरु तीने ताप निवारण हारा दुखन ता सुखरास ताको बिघन ना को लागे जाकी प्रभा गै अरदास अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे घर नौ निताव ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान नियोटियां दी ओट सच्चे पिता धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ आप जी का कोटान कोट धन्नवाद है पातशाह जी। आप जी ने अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल कीता है जी। इस वेले दीवाना की संपूर्णता तो उपरंत आप जी के स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है पातशाह जीओ सोहले साहिब जी के पाठ होए हैं बाणी पढ़द्या तो सेवा करद्या तो आप जी की हजूरी विच विचरद्या तो हुई गलतियां भुलों की मुआफी बख्शनी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी बाणी का भाव दराइया संगतां दे हिरदियां ते वसाउणा दराई संगत की हाजरी तिल फुल भेटा दर प्रवान करने अपने दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम बाणी सिमरन की दात बख्शिश करनी तंदुरुस्तियां बख्शनिया किरत कमाइया च बरकतां पाउणियां अपने लड़ लाई रखना पातशाह जीओ चार पहर दिन आप जी दे भाणे विच सुख नाल बतीत होया है चार पहर रहण आप जी अपने भाणे विच बतीत करवाउणा इस वेले आप जी का सुख आसन तैयार है आप अपने आसन ते विराजमान होवो सेवकां नूं संगतां नूं खुशियां बख्शो अमृत वेले खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल करना अमृत वेले दा जागना बख्शिश करना सही प्यारे मिलना जिन्हां मिले आप जी दा नाम चेता आवे नानक नाम चढ़दी कला वाहिगुरु जी।

ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 687 ਔਰ 688 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ 5 ਸਲੋਕ 1 ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਆਖਿਅਰ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੂ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰ ਹੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ।
ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁ ਨਾ ਝੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨ ਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ, ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸੇਦ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੋ ਕੂੰਟ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਤਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮਦਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ, ਜਹਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੂ ਨਾਮ ਕਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਪੁਨਹਿ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੂ ਨਾਮ ਕੂਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵਹ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ, ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਗਾਵੈ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ, ਤਹ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ, ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ, ਅਨਕ ਜਿਉਣ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲਕ ਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪਹੋ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸਾ, ਜਿਹੇ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜੀਆਰਾ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸਿਆਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ, ਜਹ ਮਹਾਂ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤਹਿ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ, ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਅਕਰਖੈ, ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਵਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀ ਨੋ ਦਾਨ, ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਿਬੇਕੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨਾ ਭੰਗ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ, ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਪੋਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ, ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਸਲੋਕ
बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप तप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पूर्ण दान हो मैं बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्तनेम करह बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमी फिरे चेर जीवे महा उदास तपी सरथी वह अग्न माहे हो मत प्राण कनक अशव है वर भूम दान न्योली कर्म कर बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमुख निमुख कर शरीर कटावे तौ पी होमै मैल न जावे हर के नाम समसर खश नाहे नानक गुरमुख नाम जापत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच कर दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करे मन ते कबहु न बिखिया टरे जल धोवै बहु देह अनीत सुध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत स्याण पजम का भौ व्यापै अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै पेख अनेक अग्न नहीं बुझै कूट उपाव दरगै नहीं सिजै शूट सुनाही ऊब पयाल मुहे ब्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बेन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को आपुना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जेको अपनी शोभा लूरै साध संग एहो मैं शूरै जेको जन्म मरण ते डरै साध जना की सरणी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस काओ जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊचा जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपुने ते बुरा मिटाना पिखै सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन कौ धन तेरो नाऊन थावे कौ नाऊ तेरा थाऊ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा कौ देव दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपने गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सुकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जिहे कट वसै हरे नाम सलूक निर्गुनियार ए अन्या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सचीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अग्न में जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझै प्यारे दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लिहो तौ नानक सीजै जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै सोत प्रात मीत बनता संग हसै जिह प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जिह प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसै त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक काढ लिहु प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार ते स्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा ना वनेद पावै ता स्यों मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसै बिसारे मुगद अजान सदा सदा ए भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौगी संग रचै साच छोट झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस तिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर तब प्रीत भस्म संग होए
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ। ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਪੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਸ਼ਪਸ਼ ਨਾਹੇ ਕਸ਼ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ। ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ। ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਊੜ ਨਿਭਾਵੈ। ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ, ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ। ਕਹਾ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ, ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ। ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤ, ਜੋ ਬੈ ਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਲੂਆ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ, ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋ। ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਹਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀ ਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਬਸਤੂਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹੈਰਲੇ, ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ। ਜਿਸ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਅਗਨਤ ਸਾਹੂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ। ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਾਸ਼ ਬਹੁਰ ਸਾਹੂ ਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਬਹੁਰਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਹੋਵੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਕਿਸੇ ਆਗੈ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ। ਉਸਦੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਸਰ ਪ੍ਰਹੋਬਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ। ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛੋਤਾਵੈ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਤਹਿ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਬਟਾਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ, ਤਾ ਕਉ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ਕੇ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ। ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਭ ਬਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ। ਮਿਥਿਆ ਧਰੁ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧਕੀ ਸਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਾਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨੈ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕੋ ਤਹਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸਲੇਤ ਬਿਕਾਰਾ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ਸਫਲ, ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਕਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਰਹਿਤ ਆਵਰ ਕਸ਼ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਊਨ ਜਾਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ। ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮਾਨੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤਨ ਬੇਰਾ, ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ।
उपाव सियानप सगल ते रहत सब काश जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस लई लड़ लाए थांत नंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहंमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जिह प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पंडम पटंबर हटावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताको जस रसन बखाने जिह प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पात सेती घर जावै जिह प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल शिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तू जिस को न पहुचै मन सा सा सिमरहो प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाइ दुर्लभ देह नानक ताकी भागत करे जिह प्रसाद आभूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जिह प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी जिह प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत साध तिसै त्याई तिसै त्याए जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रख है जिह प्रसाद कर है पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ साह साह चितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहो सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नीति जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जिह प्रसाद सुनै करण नाद जिह प्रसाद पेखै बिसमाद जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चलै जिह प्रसाद संपूर्ण फलै जिह प्रसाद परम गत पावै जिह प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहो गुर प्रसाद नानक मन जागहो जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल ना मनहु बिसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताकौ जाप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू तास्यो राच जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जाप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ की कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सु प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हू लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाई नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग नकत हूं तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮਹਾਂਪੁਨੀਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਬਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣੇ ਆਈ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂੰ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰਲਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨੇ ਸਤਾਰੈ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਿਨਿਹਾਲ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਕਲੁਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੋਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ੁਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਘਾਟ ਘਾਟ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਯੋਗ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਹੁਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਾਰਪੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣੇ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਆਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੌ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉ ਬਸਦਾ ਕੋਉ ਖੋਦੈ ਕੋਉ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗਹੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ,
ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेसुर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेसुर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अध्याखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, पुर थारै जो अंतर नाम, सर्व में पिखै भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कारै, नानक ओ अपरस सगल निस्तारै, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, परत्र रूप न पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करन न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की बाशना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कूट मध्ये को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत होवे नेह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा ने बाशे केवल भगत, कीर्तन संग राचै मन तन अंतर, सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवर नाम जपावे, नानक ओ वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिन सह सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म मै सोधै, राम नाम आत्म मैं सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद पुराण सिमरत बूजै मूल, सूखम मैं जाने असथूल, चहु वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोय, कर कृपा अंतर उतारै पास प्रेत, मुग्ध पाथर को तारै, सर्व रूप का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितना पाइये धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए किन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सुखावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं बियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखै तैसा तिन नाउ, आपे करण करावण जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग, असरेओ आप होए अनत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अभिनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक, पुस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमै उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तहारै, कई कोट काब काब विचारै, कई कोट नवतन नाम ते हावै, नानक करते का अंत न पावै, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभेग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरै, कई कोट पर दुख न करै,
कई कूट माया शर्म माहे, कई कूट परदेश परमाहे, जित जित लाव हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कूट सिद्ध जति जोगी, कई कूट राजे रस भोगी, कई कूट पंखी सर्प उपाय, कई कूट पाथर बिरख निप जाए, कई कूट पवन पाणी बैसंत्र, कई कूट देश भूमंडल, कई कूट ससियर सूर नखियत्र, कई कूट देवदान व इंद्र सिर शत्र, सगल समग्री अपने सूत तारे, नानक जिस जिस भावै तिस तिस ने सुतारे। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसासत, कई कोट किए रतन समंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चैर जीवे, कई कोट गिरि मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जाख्य किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मै चिंत, जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ के हाथे। कई कोट पै बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मै पार ब्रह्म लहंते। कई कूट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश, कई कूट मंगै सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कूट खाणी अरखंड, कई कूट आकाश ब्रह्मांड, कई कूट हुए अवतार, कई जुगत कीनो बिसथार, कई बार पसर्यो पसार, सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते हुए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवै, अमर भय साध साध ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहज समावै, आपुने जन को सा सा सुमारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलहारण है, जल सल मही अल सोए अष्टपदी। करण करावण करने जोग, जो तिस पावै सोई होग, खिन मैं थाप उथापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे तहार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनकरंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वड्याई, नानक समय रहा समाई। प्रभ पावै मनुख गत पावै, प्रभ पावै तां पाथर त्रावै, प्रभ पावै बिन स्वास्थ्य राखै, प्रभ पावै तां हर गुण भाखै, प्रभ पावै तां पतत उधारै, आप करै आपन बिचारै, दोहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै। कहो मनुख ते क्या होया वै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ते सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत दिखिया महर जे, जे जानत अपना बचे, पर मैं भूला तै सतावे, निमख निमख माही चार कुन तेरे आवे, कर कृपा जिस अपनी भक्ति, नानक ते जन ना मिले, खिनमे नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु ना आवे, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीस, ताक्या लिखा गने जगदीस, जियो पिंड सब तिसकी रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवै देख वडाई, इसका बल नाही इस हाथ, कर्ण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावे सोई फुन थियो, कबहू ऊंच नीच मह बसे, कबहू सोग हर रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्योहार, कबहू ऊब आकाश पाए यार, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहू निरत करे बहु पात, कबहू सोए रहे दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू होए बहे वड राजा, कबहू पैकारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत मह आवे, कबहू भला भला कहावे, ज्यो प्रभ राखै तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहू होए पंडित करे बखान, कबहू मोन धारी लावै ध्यान, कबहू तत्
तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हसत अंग हुए जिया अनक जोन भर में परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावै ज्यो प्रभावै तिवे नीचावै जो तिस भावै सोई होय नानक दूजा अवर न कोई कबहू साध संगत एह पावै उस अस्थान ते बहोर न आवै अंतर होए ज्ञान परगास उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते इक रंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग ज्यो जल मह जल आए खटाना त्यो ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए कवन पाए विश्राम नानक प्रभ के साधु गुरुवान सलोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले वडे वडे अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जो वनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को कर्म बंत कहावै जन्म मरे बहु जोन परमावै तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावै नानकी हां मुक्त आगै सुख पावै तनवंता होए कर गरवावै त्रिन समान कछु संग न जावै बहु लस्कर मान उपर करे आस पल पीतरता का हुए बिना सब ते आप जाने बलवंत खिन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दर गह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले वीर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगे कहो कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट नावे सर्व की रहन जा का मन होए कहो नानकता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछु होए तब इसको सुख ना ही कोए जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मह फिरता जब तारे को वैरी मीत तब लग निश्चल ना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छुटे सहस खटे लख कोट तावै तृप्त नावै माया पाछे पावे अनेक भोग विख्या कह करे नह तृप्तावै खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ व्यर्थे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए वडभागी किसे प्राप्त होए कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन करने हार इसके हाथ का विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हु के संग बुझे देखे करे विवेक आपह एक आपह अनेक मरे ना बिनसे आवे ना जाए नानक सद ही रहा सुमाए आप उपदेशे समझे आप आपे रचया सबके साथ आप कीनो अपन विस्तार सब कुछ उसका ओह करने हार उसते पिन कहो किछु होए थान थनंतर एक सोए अपने चलत आप करने हार कौतक करे रंग आपार मन में है आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वखे आनी सच सच सच सब कीना कोट मजे किने बिरले चीना पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी सवण बखानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत सरन जो जन परे सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहोर बहोर अवितार अष्टपदी संत के दुखन आर जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक मह पाए
संत के दुखन मत हुए मलीन, संत के दुखन सोवा ते हीन, संत के हते को रखे न कोय, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत किरपाल किरपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी करे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काल ज्यो लवे, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगद जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा मह जले, संत के दुखन सब को छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे ता ओए भी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिंटी करना पाई, संत का निंदक महा हतियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा वियोग, संत की निंदा दोख मह दोख, संत का निंदक सन्नानक संत पावे ता उसका होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मिंत, संत के दुखी को डन लाके, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा बीकारी, संत का दुखी जन मैं मरे, संत की दुखना सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काय ना पहुँचे, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतरते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछु नाही, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को वरन राखन हार, नानक संत पावे ता लय उबार, संत का दुखी ओ बिल लाए, जो जल बिहन मछली तड़पड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, जो पाव किंद नहीं तरापै, संत का दुखी छुटे अकेला, संत जो बुआर तिल खेत माही दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दर गह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाय, संत का दुखी ना मरे ना जीवाय, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख ना त्रिष्टे कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कीर्तना मेटे कोई, नानक जाने सचा सोए, सब कर तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो हो दिन रात, तिसहिते आव हो सास गिरास, सब किस वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेला करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, वड भागी नानक जन से सलोक, तज हो सियानप सुरजन हो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पो जाए, अष्टपदी मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन कोए के भगवान, जिसके दिए रहे आगाए, बहो न तृष्णा लागे आए, मारे राखे एको आप, मानुक के कुछ नाही हाथ, तिसका हुकम बुई सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिगड़ न लागे कोए, उस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्योहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सोहिला कर लहे जियो, नैन हो बेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसे सब संग, चरण चलो मार गोविंद, मिटेह पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर गह नानक उजल मथा, बड़ भागी तेजन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोलो हर मुखी, सदा सदा जानो होते सुखी, एको एक एक पछाने, इत उत की ओह सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिनह निरंजन जान्या, गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जान हो तृष्णा बुझे, साध संग हर हर जस कहत,
सर्व रूप त्यो हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बखान, गृहस्थ में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागै दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सोहेला नहीं डुलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो शिव कोह किस ते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब बूझिया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असूल। नह किश जन्मे नह किश मरे, आपन चलत आप ही करे। आवन जावन दृष्टन दृष्ट, आक्या कारी तारी सब श्रिष्ट। आपे आप सगल मह आप, अनक युक्त रच थाप उथाप। अविनाशी नाही किश खंड, तारन तारे हो ब्रह्मंड। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोवा बंत, सगल संसार उतरे तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारन, प्रभ के सेवक दुख विसारन। आपे में लय कृपाल, गुर का शब्द जप पै निहाल। उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करह बड़ भागै। नाम जपत पावह विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किश करे सो प्रभ के रंग, सदा सदा बसे हर संग। सहज सुभाए होवे सो होए, काढ़ने हार पछाणे सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिससे उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निदान उन्हों बन आए। आपस को आप दिनो मान, नानक प्रभ जन एको जान सलोक। सर्व कला परपूर प्रभ, बिरथा जानन हार। जाके सिमरन उतरिए, नानक तिस बले हार अष्टपदी। टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जिया पे प्रतपाल। सकल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जेसो प्राणी लोचे कोए। तिस बिन नाही तेरे किश काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सो है। तनवंता होए क्या को गर्वे, जा सब कुछ तिसका दिया गर्वे। अत सूरजे कौ कहावे, प्रभ की कला बिना कहता वे। जी को हुए बहे दातार, तिस दीन हार जाने का वार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। ज्यो मंदर को थामे थमन, त्यो गुर का शब्द मने अस थमन। जो पखाड़ नाव चढ़ तरे, प्राणी गुर तरन लगत निस तरे। जो अंधकार दीपक प्रकाश, गुर दर्शन देख मन होए विगास। जो महा उद्यान मह मार्ग पावै, त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावै। तिन संतन की वाशो तूर, नानकी हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिलाइय, पूर्व लिखे का लिखिया पाइय। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिस है चितार। जो किश करे सोई सुखमान, पूला काहे फिरे आजान। कौन वसताई तेरे संग।

दूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइय, साध संग हर कीर्तन गाइय, अनक बिगनते साधु राखै, हर गुण गाए अमृत रस चाखै, ओट गही संत है दर आया, सर्व सुख नानक तह पाया, मृत को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार, सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब कुछ तिसका ओह करने योग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल एह करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए तह लोय, जाके हृदय को होय, सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सतमुख कहत, साची दृश साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता, श्लोक रूप ना रेख ना रंग किश, त्रह गुण ते प्रभ भिन्न, तिसह बुझाए नानका, जिस होवे सुपर सन अष्टपदी, अभिनाशी मन अभिनाशी प्रभ मन महराख, मान की तू प्री त्याग, तिस ते परे नाही किश कोए, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गुहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्श संद, साध तेरे की चरनी पाओ, नानके मन एह अनराओ, मनसा पूरन सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर, अनद रूप मंगल सद जाकै, सर्व थोक सुनिय करता कै, राज महराज जोग मह जोगी, तप मह तपीसर ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया, जाकी लीला कीमत नाहे, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म का जाने पूत, सगल प्रोई अपने सूत, सुमत ज्ञान त्यान जिंदे, जन दास नाम ते आवह इसे, त्रह गुण तह गुण में जा को परमाए, जन्म मरे फिर आवह जाए, ऊच नीच तिसके अस्थान, जैसा जनावह तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पीख करे इक रंग, नाना विद की नो विस्थार, प्रभ अविनाशी एक ओंकार, नाना चलत करे किन माहे, पूर हो पूरन सब ठाहे, नाना बिद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले चंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उतरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे सोमाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत जन जाके हृदय प्रवेश, सत नृत बुझे जे कोई, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी शिष्य करने हार, अवन बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस पावे सो वर्तिया, बिस्मन बिसम पै बिस्माद, जिन बूझया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राज जन रहे, गुर के वचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरे संसार, जन का सेवक सो वड भागी, जन के संग एक लिव लागी,

दूर कथना कथी नया वै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देता दे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर।

मन है मन कुए, मन न सुरत हुए मन बुद्ध, मन न सगल पवन की शुद्ध, मन न मुह चोटा न खाए, मन न जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कुए, मन न मार्ग ठाक न पाए, मन न पातशों पर घट जाए, मन न मग न चले पंथ, मन न धर्म से तीसन बंद, ऐसा नाम निरंजन हुए।

तिसते हुए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह भक्सार, असंख मोन लिवलाए तार। कुदरत

अंध मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाख खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जोत दुपावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कह सिर भार हो अखरी नाम अखरी शाला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिने लिखे ते सिर नाहे जिव फरमाए तिव तिपाहे जीता कीता तेता नाओ विण नावै नाही कोताओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जोत दुपावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हथ पैर तन देहे पानी धोतै तो उतर सखे मूत बलीती कपड़ होए दे साबुण लइयै उह धोए भरिए मत पापा कै संग उह धोपै नावै।

जा करता सिरठी को साजी आपे जाने सुई किव करिया का किव शाला ही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब कु आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुवै नानक जी कु आपौ जाने अगे गया न सुहै पाताल पाताल लख आगासा आगास ऊड़ कूड़क पाल थके वेद कहनिक वात सैस अठारह कहनक तिबा असलू विकतात लिखा हुए त लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाही इति सुरत न पाईया नदियां तैवाह पवै समुंद न जानिए समुंद साह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुलना हुवनी जे तिस मनो न विसरह अंत न सिफती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिल लाहे ताकि अंत न पाए जाहे हो अंत न जाने कुए बहुता कही है बहुता हुए वड्डा साहिब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हुए बड़ू चा हुए कुए तिस ऊंचे को जाने सोए जीवड़ाप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगह जूद अपार कितिया गणत नहीं विचार किते खप तुटह वेकार किते लै लै मुकर पाही किते मूर्ख खाही खाही कितिया दू भुगसद मार हे पेदा तेरी दातार बंद कलासी भाणै हुए हु राख न सकै कोए जी को खाए कि आखण पाए ਉਹ ਜਾਣੈ ਜਿਤਿਆਂ ਮੁਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੇ ਭੇਕੇ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਸਾ ਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਲ ਆਵੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੀ ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸੁਮਾਹੀ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ ਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੀ ਲਿਵਲਾਏ ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਕਿਆਨ ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ਆਖਹਿ ਈਸ਼ਰ ਆਖਹਿ ਸਿੱਧ ਆਖਹਿ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦੇਵ ਆਖਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠੁੜ ਜਾਹੇ ਇੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਕ ਨ ਸਕਹਿ ਕੇ ਕੇ ਜੀਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰਗਾ ਵਾਰ ਆਂਗਾ ਵਾਰ ਸੋ ਦਰ ਕੇ ਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇ ਹਾ ਜਿਤ ਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ

पौन पानी वह संतर गा वह राज है धर्म दुआरे गा वह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गा वह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गा वह इंद्रें दासन बैठे देव के आदर नाले गा वह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गा वह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन उपाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावह जूद महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनु गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले

सी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिनु पाई। कर कर वेख की तापना जीव तिस्ती वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई। सो पातशाहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख शर्म पर झोली ध्यान की करै विभूत। खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत। आदेश तिसै आदेश आदनील अनाद अनाहत जुग जुगे कुवेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजै नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध रसाद। संजोग विजोग द्वकार चला वह लिखे या वह भाग। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे कुवेश। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी कलाए दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। ओ वेखै उन्ना नदर नाया वै बहुत आय हो विडान। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे कुवेश। आसन लोय लोय भंडार जोग छपाया सो एका वार। कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे कुवेश। एक दूजी बहु लख हो हे लख हो वै लख वीश। लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। एत राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए कीस। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ है ठीस। आखन जोर चुपै

जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती ताप रखी धर्मशाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आव सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवार, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाय, धर्म खंड काहु धर्म, ज्ञान खंड काया को कर्म, किते पवन पाणी वै संतर, किते काण महेश, किते भर में काढ़त घड़िय है, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश, केते देव दान मुन केते केते रत्न समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद, केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै काढ़त घड़िया बहुत अनूप, ताकिया गल्लां कथिया न जाए, जी को कह पिछे पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की शुद्ध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोत महाबल सूर, तिन मह राम रहा भरपूर, तिथै सीतो सीता महमा माही, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहि मरे न ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करै अनंत सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जी को कथै तंत अनंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकुम तिवै तिवकार, विखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा धीर सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, पौ खलागन तपताऊ, भांडा पौ अमृत तटाल, घड़िए शब्द सच

जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूं नह जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सुदैव मानता ही एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव न जाने जे भेद और कतेव रूप रंग न जात पासु जाने के जीव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के विकह जग जा पीजे जाप आ देवनाद मूर्त तप्य सब जीता परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुर कपाप सर्व विश्व रचियो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुर का देश धर्म धाम सुपरम रहत भूत लक भेष अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमी गणु सत एक पुर कवतूत गर्भ गंजन सर भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंग नातम एक पुर कपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नाया वही वचित मत पार छंद प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार असन भंग उपमा नंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनाथ आज

කාල රංකාන රංකාල අනකාල අනුපූතංගා පාපංගත් මෙත්තපාර ගුණගන් උදාර මුණගන් ප්‍රණාම නිර්පැණිකාම් අද්දුත් ප්‍රචණ්ඩ මෙත්කත කණ්ඩු අලිශ්‍ය කර්මු අදෘශ්‍ය තර්මු සර්වාපරණ්ඩයන්ඩන් පඩ්ඩය චාචරි චන්තුව ප්‍රසාද ගෝබින්දේ මුකන්දේ උදාරේ අපාරේ හරියං කරියං නිර්ණාමේ අකාමේ පුජං ප්‍රයාචන්ද චතුර්චක්‍ර කර්තා චතුර්චක්‍ර හර්තා චතුර්චක්‍ර දානේ චතුර්චක්‍ර ජානේ චතුර්චක්‍ර වර්තී චතුර්චක්‍ර පර්තී චතුර්චක්‍ර පාලේ චතුර්චක්‍ර කාලේ චතුර්චක්‍ර පාසේ චතුර්චක්‍ර වාසේ චතුර්චක්‍ර මාන්‍ය චතුර්චක්‍ර දානේ චාචරි චන්දන සුත්‍රය න මිත්‍රය න පර්මං න පිත්‍රය न कर्मं न काय जन्मं जाय न चित्रय न मित्रय परे है पवित्रय प्रतिशय अधिशय अदृशय अकृशय भगवती चन्त्व प्रसाद कथते या चिज देशय किया भिज भेषय किया गंज कर्मय किया भंज भरमय किया भिज लोकय किया दित सोकय के अवतूत वरणय के विभूत करणय कि राजं प्रभा है कि धर्मं तुजा है किया सुख वरणय के सर्वा अपरणय कि जगतं कृति है कि छत्रं छत्री है कि बर्मं स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आदि अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रं बहीन है कि कै अधीन है कि रोजी रिजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक व्यैव है कि गै भूल गैव है कि फुल गुना है कि सा अनुसा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी ध्यान दे कि राजक रहीम है कि कर्मं करीम है के सर्वं कली हैं के सर्वं दली हैं के सर्वत्र मान्य हैं के सर्वत्र दान्य हैं के सर्वत्र गौण हैं के सर्वत्र पौण हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कली मैं कि परमं फही मैं कि अकल अलम मैं कि साहिब कलाम मैं कि हुस्नल वजू है तमामुल रुजू है हमेशल सलाम मैं सलीकत मुदाम मैं गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम मैं रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम मैं रजाय की यकीन है अनेक कुल तरंग है अपेद है अपांग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्वाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाध रूप है अनाथ स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगाधे शुभं सुरभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है चिज है अछूत है कि नरकं प्रणास है प्रतिफुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है निरुक्त सदा है विपुगत स्वरूप है विपुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है चाचरी छंद अपांग है अनांग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अदिख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट चंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छन्त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते
अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सूत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाक शरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभाह अजय है अजा है भगवती छंत्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है अमिसुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनुल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी दयांद है कि राज करहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनुल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग परनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबान के साहिब किराए के नरकंग प्रनाश है बहसुल निवास है के सर्वल गवन है हमेशल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधिशुल अरेख है हमेशल अपेख है जमीनुल जमा है अमी कुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के चलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मद पार चंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सुलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव नास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशिज अंग वसन अपंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिश विश्व पांड जल तल महंत दिशिष बेअंत अनुभव नास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनचिज गातु अजिज न बातु अनचंज गातु अनरंज बातु अनटुट भंडार अनडट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतव प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कलकंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है तपा तप है कृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी त्रित है मिथेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वंपर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पपंजन है रगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म वस है जस के जस है भुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वास वासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास कास अगंज पंच लख पक काल दयाल लेख पेख अनाम काम अगह अटाह अनाथे परमाथे अजुनि अमोनि नराग नरंगे नरूपे नरेके अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग विपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा।

सहाई, दुष्ट दोख ते लिहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता। किल विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तुज पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांचत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहि सुर सना पावई, सुने मूढ़ चित लाई चतुरता आवई। दुख दर्द भव निकट न तिन नर के रह, ओ जो याकी एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय, अर्ध सह सुन तीन कही जय। आदर सुधी अष्टमी

कहे मतिक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है बपीत कहे हम एक न जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो। दो वरा सगल

चक्का चक्की चक तलवारों ले बहुत अनंत लाटू माधाणियान गा पंखी पौंदियां लैन नसा सुह।

0: नानक जंतु पाए कै संभाले सपना, जिन करता करना किया चिंता पे करनी ता, सो करता चिंता करे जिनो पाया जग, तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान पग, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।
1: लख ने किया चंगियाईया लख पुना प्रमाण, लख तप ऊपर तीर्था सहज योग बेबाण, लख सुरतन संग्राम रणमय छुटे प्राण, लख सुरती लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण।

बूझो नहीं, घट मह जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज

कहे कबीर गुर भली बुझाई कीटी हुए कह खाय कबीर जोतह साध पिरम की शीश काट कर गोए खेलत खेलत हाल कर

ब्रह्म का संगल तोड़ने वाला हर अंतर हरस पाया निस्दामन जो चमक चंदायन देख निस ज्योत निरंजन पिख निरंतर पिख

0: ससरी नाहिर कोई किसी उतै जवाब न होई नानका प्रभ आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवा अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मद सूदन दामोदर स्वामी ऋषिकेश गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीशर हर जीओ असर सुंगारे जग जीवन अविनाशी ठाकुर घट घट वासी है संगा तरणी धारी नरसंग नारायण दाड़ा अग्र प्रथम तारायण बामन रूप की आतुद करते सब ही सेती है चंगा श्री रामचंद जस रूप नरेख्या बनवाली चक्र पाण दर्शन उपया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सदय मंगा भगत वचल नाथ नाथ गोपीनाथ सगला साथे गोपीनाथ सगला साथे वासदेव निरंजन दाते बरन न साखो गुणेंगा मुकांद मनोहर लक्ष्मी नारायण
1: त्रुटि लजा निवार उदाहरण कमला कांत करे कंतहल अनंत विभूति नह संगा अमोघ दर्शन अजुन संभव अकार मूर्त जस कदे नाही खाओ अविनाशी अविगत अविनाशी अविगत अगोचर सब किछ तुझी है लगा श्री रंग बेकुंठ के वासी मच्छ कच्छ कूरम आ गया औतरासी केसव चलत कहे निराले कीता लोढ़े सो होएगा निराहारी नर वैर समाया तार खेल चतर पज कहाया सावल सुंदर रूप बना है बैन सुनत सब मुहेगा बनमाला विपुखन कमल नैन सुंदर कुंडल मुकट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत संगा पीत पतंबर त्रिपवन तनी जगन नाथ गोपाल मुखी मुखपणी सारंग तार भगवान बिठुला मैं गणत न आवे सरबंगा नह कंटक नह केवल कहिया तंजय जल थल है महिया मिरत लोक पै आल समीपत अस्थर थान जिस है अपगा पतित पावन दुख तय पंजन अहंकार निवारण है पव खंडन भक्ति दुखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अचल अडोले ज्योत स्वरूपी सब जग मूलो सो मिले जिस आप मिलाए आप हो कोई नन पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना आप उपाव है आप खपाव है तुद लेप नहीं एक तिल रंगा एक जीह गुण कवन खवा बखाने सहस फनी सेख अंत ना जाने नतन नाम जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा उठ गही जगत पित सरणाया पै पियानक जम दूत दुत्तर है माया हो कृपाल इच्छा कर राखो साध संतन कै संग संगा दृष्ट मान है सगल मथेना इको मागो दान गोविद संतरेना मस्तक लाए परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाते तिन साधु चरण लै हृदय प्राते सगल नाम निदान तन पाया अनहद सबद मन वाजंगा कीर्तम नाम कथै तेरे जेहबा सत नाम तेरा परा पुरबला कह नानक भगत पै शरणाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथे ता आप वखाण है। नानक दास दासन को करियो, हर पावे दासा राख संगा। मारू महला पांजमा, अलह अगम खुदाई बंदे। छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, होए पै खाक फकीर मुसाफर। इहो दरवेश कबूल दरा, सच निवाज जकीन मुसला। मनसा मार निवारो आसा, देह मसीद मन मौलाना। कलम खुदाई पाक खरा, सरा सरियत लय कमाव हो। त्रिकत तर्क खोज टुलाव हो, मारफत मन मार हो अब्दाला। मिलो हकीकत जत फिर न मरा, कुरान कतेव दल माहे कमाही। दस औगत रखो बदराही, पंच मरद सिदक ले बाधो। खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मिहर रोजा पै खाका। पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मस्क खुदाया। बंदगी अल्हा अला आला हजूरा, सच कमावे सोई काजी। जो दिल सोदे सोई हाजी, सो मुला मल औन निवारे। सो दरवेश जिस सिफत तरा, सबे वखत सबे करवेला। खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करहो दस मर्दन। सुन्नत सील बंदान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला। खिलखाना ब्रादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फानाया। एक मुकाम खुदाए दरा, अवल सिफत दूजी साबूरी। तीजै हलेमी चौथै खैरी, पंजमे पंजे एकत मुकाम है। एह पंच वखत तेरे अपरपरा, सगली जान करो मौदीवा। बद अमल छोड़ करो हथ पूजा, खुदाए एक बुझ देवो बांगा। बुरगु बरखदार खरा, हक हलाल बखोर खाना। दिल दरियाओ तो हो मैलाना, पीर पछाणे पिस्ती सोई। अजराइल न दोज ठरा, काया किरदार औरत यकीना। रंग तमासे मान हकीना, ना पाक पाक कर हदूर। हदीसा साबत सुरत दस्तार सिरा, मुसलमान मोम दल होवे। अंतर की मल दल ते तोवे, दुनिया रंग न आवे नेड़ै। जो कसम पाट क्यों पाक हरा, जाको मेहर मेहर मेहरवाना। सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई सेख मसायक हाजी। सो बंदा जिस नजर नरा, कुदरत कादर करण करीमा। सिफत मोहब्बत अबाह रहीमा, हक हुकम सच खुदाया। बुझ नानक बंद खलास तरा, मारू महला पांजमा। पार ब्रह्म सब ऊच विराजे, आपे थाप उथापे साजे। प्रभ की शरण गहत सुख पाइये, किछ पौना व्यापे बालका। गर्भ अगन मह जिन्हें उबारिया, रकत करम मह नहीं संगारिया। अपना सिमरन दे प्रतपालिया, ओहो सगल कटा का मालका। चरण कमल शरणाई आया, साध संग है हर जस गाया। जन्म मरण सब दुख निवारे, जप हर हर पौ नहीं काल का। समर्थ अकथ अगोचर देवा, जी जंत सब ताकी सेवा। अंडज जेरज सेतज उत्पज, बहु प्रकारी पालिका। तिसे प्रापत हुए निधाना, राम नाम रस अंतर माना। कर गहलीने अंध कूपते, बिरले के साल का। आद अंत मद प्रभु सोई, आपे करता करे सो होई। ਭ੍ਰਮ ਪਉ ਮਿਟਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ

जागै अनद बिनोद करे हर सिमरन तिस माया संग न तालका रोग सोग दुख तिस नाही साध संग हर कीर्तन गाही अपना नाम दे प्रभ प्रीतम सुन बिनंती खालिका नाम रतन तेरा है प्यारे रंग रते तेरा दास अपारे

कमल हृदय नत तारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आ गए, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पेंड दे साज सवारे, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पज अचत स्वामी, दीर्घय सोबा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सद, नाम निदान सहज सुख नौनद, सर्व कल्याण जे मन मह चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सास सिमरत वेद बखानी, जन्म पदार्थ जीत प्राणी, काम क्रोध निंदा पर हरिया, हर रसना नानक गावना, जस रूप न रेख्या कुल नहीं जाती, पूरन पूर रिहा दिन राती, जो जो जपै सोई वड़ पागी बहुत।

किरत कने को रखे ना कोई नरक कोर मह पावना जियो प्राण तन तन तन जिन साजिया मात गर्भ मह राख निवाजिया तिस स्यो प्रीत छाड़ अनराता काहू सरे न लावना तार अनुग्रह स्वामी मेरे कट कट वसे सबन कै नेरे हाथ हमारे कछु नाही जिस जनाहे तिसे जनावना जाके मस्तक तर लिख पाया तिसी पुरख ना व्यापे माया नानक दास सदा सरनाई दूसर लवे ना लावना आज्ञा दुख सुख सब कीने अमृत नाम बिरले ही चीने ताकी कीमत कहन न जाई जत कत उही समावना सोई भगत सोई वडदाता सोई पूरन पुरख विधाता बाल सहाई सोई तेरा जो तेरे मन पावना मेरत दुख सुख लिख पाए तिल नहीं बधे कटहे ना कटाए सोई होए जे करते पावे

चढ़ हथ चाल सो सागर लहरी दे ठाक न सच्चे बुहे थे जे गुर तीरक दे तत दर जाए उतारिया गुर दसै सावतान नानक नदरी पाई है दरगह चल मान पौड़ी नह कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मिलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यो बन आई ऐठै सुख दाता मन वसै अंत हुए सखाई हर स्यो प्रीत उपजी गुर सोजी पाई श्लोक महला पहला भुली भुली मैं फ्री

कमाए, नानक चानण गुर मिले। दुख बिख जाली नाए पौड़ी, माया वेख ना भुल तू। मन मुख मूर्खा चल दिया नान नाल न चलई, सब झूठ दर्ब लखा अज्ञानी अंध न बुझई। सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा। आपक

जगत है जिन राम पिछाणे तन तन से जन जी जन जन हर सेविया तन हो सच्चे दर जाना दर जाने ऐथे उथे मुक्त है जिन राम पिछाणे तन तन से जन जन हर सेविया तन को कुर्बाने श्लोक महला पहला महल कुचजी मड़वड़ी काली मनोक सद जे गुण होवन ता पर रवे नानक अवगण मुंद महला पहला साच सील सच संजमी सा पूरी परवार नानक अहनस सदा पली तिर कहेत प्यार पौड़ी अपना

रस जिनी चाखिया अनरस ठाक रहाया, हर रस ती सदा तृप्त पहे फिर तृष्णा पुख। हर रस जिनी चाखिया अनरस ठाक रहाया, हर रस पी सदा तृप्त पहे फिर तृष्णा पुख गवाया। श्लोक महला तीजा। तर खुशिये तन राविये, तन उर नाम सिगार, नानक तन आगे खड़ी सोबावंती नार। महला पहला। ससुरै पेये कंत की, कंत अगम अथाहो, नानक तन।

मान के अधिक तरंग क्यों दर साहिब छुट्टी है जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुट्टी है जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजे आपे सृष्ट सब साजियन आपे वरतीजे गुरमुख सदा सहालिए सच कीमत कीजे गुर सबदी कमल बिगासिया इव हर रस पीजे आवना जाना ठाकिया सुख सहज सवीजे श्लोक महला पहला ना मैला ना तुंदला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच महला तीजा सहज वनस्पत फुल फल पवर वसै पै खंड नानक तरवर एक है एको फल परंग पौड़ी जो जन लुझे।

पौड़ी। हर नाम बिना जगत है, निर्दन बिन नावे तृप्त नाही। दूजे परम पुलाया हमे दुख पाही। बिन कर्मा किछ न पाइये जे बहुत लुचाही। आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही। आप करे जिस आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा। इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुरु मिलिया प्रभ आए। सतगुरु सच दृढ़ाया, इस तन की कीमत कही न जाए। इत तन पाइए भुख लथी, सुख बसिया मन आए। जिन्ना कौतर लिखिया तिनी पाया आए। मनमुख जगत निर्दन है, माया नो बिल लाए। अंधन फिरदा सदा रहे, भुख न कदे जाए। शांत न कदे आवई, न सुख वसे मन आए। सदा चिंत चित वदार है, सहसा कदे न जाए। नानक बिन सतगुर मत पवई, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में

सिमरो पाहरो पिसदन अवर न कोय। खाना शब्द चंग्याया जित खादे सदा तृप्त होए। पहनण सिफत सनाए है सदा।

सार है, जित सदा सदा सुख हुए, नानक गुरमुख बूझिए, जसनो आप बिखाले सोए, पौड़ी अंतर जप अंतर जाप तप सजमो, गुर सबदी जापे, हर हर नाम त्याई है, होमे अज्ञान गवापे, अंदर अमृत भरपूर है, चाख्या साध जापे, जिन चाख्या से निरपो पहे, से हर रस

अंदर राजा तखत है आपे करे नियाओ, गुर सब दी दर जानिए अंदर महल असराओ। खरे परख खजाने पायन खोटिया नाही थाओ, सब सच्चो सच वर्तदा सदा सच नियाओ। अमृत का रथ आया मन वस्या नाओ, महला पहला हम मैं करी ता तू नाही, तू हो वह हो नाहे। बुझो ज्ञानी बुझना ए अकथ कथा मन माहे, बिन गुर तत् न पाइये अलख वसे सब माहे। सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसे मन माहे, आप गया ब्रह्म पो गया जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाइये उत्तम मत तराहे, नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिपवन से समाहे। महला तीजा।

नानक तिस शरणागति, जिन जगत उपाया। श्लोक महला तीजा। जिनको अंदर ज्ञान नहीं, पै की नाही बिंद, नानक मुया का क्या मारना, जे आप मारे गोविंद। मन की पत्री वाचनी, सुखी हो सुख सार, जो ब्राह्मण भला आखिए, जे बुझे ब्रह्म विचार। हर सलाहे हर पड़े, गुर कै शब्द विचार, आया ओ

सबना का साहिब एक है गुर सब दी रचा गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा जो नानक आपन चाहेदा तिभी को नच्चा सुद मारू वार महला पांजमा डखने महला पांजमा

पात साहो जिस मिल की जय भोग पौड़ी तू अगम। दयाल ब्यंत तेरी कीमत कहे।

मंजन समावई। जे गल तहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन न आवई तू हुकमी साज सृष्टि साज समावई। तेरा रूप न जाई लख्या क्यों तुझे त्यावई तू सब में वर्त है आप कुदरत देखावही। तेरी भगत परे पंडार तोट न आवही एह रतन जबे हर लाल कीम न पावही। जिस होवे आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही तिस कदे न आवे तोट जो हर गुण गावही। दखणे महला पांजमा जाम पसी हठ में प्रीम है जय नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल। महला पांजमा ना

मित्र है, ताक्या मैं काड़ा जिनी ठगी जग ठगया, से तुद मार निवाड़ा गुर पौजल पार लंगाया, जित्ता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा, वड्डा अखाड़ा सब इंद्रिया वस कर दित्यो सतवंता साड़ा। जित लायन तुत्ते लग दिया, नह खिंजो ताड़ा, जो इच्छी सो फल पाया पायदा, गुर अंदर वाड़ा गुर नानक तुठा पाहिरो हर वसदा नेड़ा। दखने महला पांजमा जामू आवे चित तू।

सग अह कर करे सो अह कर पाए, एक घड़ी मोहत ना लगे चारे जुग मैं सो दिया, बिन संगत अहंकार न पगे होमे मूल न छुट्टई, बिन साधु सतसंगे टिचर था न पावे, जिचर साहेब स्यो मन पंगे जिन जन गुरमुख सेविया, तिस घर दीवान अपगे हर कृपा ते सुख पाया, गुर सतगुर चरणी लगे दखनी महला पांजमा, लोड़ी दे हब जाए सो मीरा मरन सिर, हाथ मंजो सो तनी चौदो मुख अलाए महला पांजमा, माणक मुहे मा

छावना जे देखे है कवार ता सुख की माहू बाहरे पौड़ी मन लोचे हर मिलन को क्यों दर्शन पाया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाया मैं चार कुंडा पा लिया तुद जे वड़ ना साया मैं दसे मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाया मन अर्प्यो हो मैं तजो इत पंथ जुलाया नित सेव है सेव अपना सत संग मिलाया सबे आसा पूरिया गुर महल बुलाया तुद जीवड होर न सुजई मेरे मित्र गुसाया डखने महला पांजमा मूथी आओ तख्त तिरी मैंजे पातशाह पाव मिलावे कोल कवल जिवे बिकसाव दो महला पांजमा पिरिया संदड़ी पुख मुँह लावण थी विथरा जानू मिठाई इख बेई पीड़े ना हुते महला पांजमा ठगा नी हो मतोरड़ जान गंदरबा नगरी सुख कटाओ डोए इस पंदाणु कर कहने पौड़ी अकल कला न पाईए प्रभ अलख अलखंग खट दर्शन परमते फिरे ना मिलिए पिंखंग वर्त करे चंद्रायणा से किते ना लेखंग वेद पढ़े संपूर्णा तत् सार ना पेखंग तिलक कढ़े स्नान कर अंतर का लेखंग पेखी प्रभु न लब्बई विण सच्ची सिखंग उला मार्ग सो पवे जिस तुर मस्तक लेखंग तन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखंग दखने महला पांजमा सो निवाहो गड जो चालाओ ना थीए कार कुड़ावी छड सम्मल सच तनी महला पांजमा हब समाणी जोत जो जल कटाओ चंद्रमा प्रगट थिया आप नानक मस्तक लिखिया महला पांजमा मुख सुहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाओ नानक दरगह मन्नी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर पेख न पाईए प्रभ अंतर जामी एक सहर जियो बाहरी सब फिरे निकामी मन रत्ता कुटंब स्योनत गर्भ फिरामी फिर है गुमानी जग मैं क्या गर्भ है दामी चल दया नाल न चलई खिन जाए बिलामी बिचर दे फिर है संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुरु पाया हर मिलिया स्वामी जो तन हर का सेव को हर तिस की कामी दखने महला पांजमा मुखो अलाए हब मरण पिछाण दो कोए नानक तिना खाक जिना जकीना हैक सेओ महला पांजमा जान बसोंदो मंज पिछाणो को हेकड़ो तै तन पड़दा नाहे नानक जय गुर पेटियो महला पांजमा मतड़ी कांडक आह पाप तुम दो पीवसा मुँह तन प्रेम अथा पसन कु सच्चा तनी पौड़ी निरपौ नाम विसारिया नाल माया रचा आवे जाए पवाईए बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंधरो थोथा कुड़ियार कुड़ी सब खच्चा वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पातशाह वेख तुर कर्मचा जमदुती है हेरिया दुखी मह पच्चा होया तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखने महला पांजमा पर पाते प्रभ नाम जप गुर के चरण त्याए जन्म मरण मल उत्तर सच्चे के गुण गाए महला पांजमा देह अंधारी अंध सुनी नाम बिहूनिया
ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੈ ਜੇ ਘੱਟ ਬੁੱਠਾ ਸੱਚ ਤਹੀਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋਇਣ ਲੋਈ ਡਿੱਠ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਮੂੰਹ ਕਣੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਬਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ਉਹ ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਈ ਓਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਸਭ ਤਿੱਖਾ ਬੁਝਾਈ ਓਨ ਛੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਕੇ ਅੰਤਰ ਲਿਵਲਾਈ ਉਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਹਰ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਓਨ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਮ ਕੀਤਿਆ ਸਭ ਨਾਲ ਸੁਭਾਈ ਹੋਆ ਉਹੀ ਅਲ ਜਗ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਪਾਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਿਓ ਬਣ ਆਈ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਚ ਸੁਹਾਵਾ ਕਾਢੀਐ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਐ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਿਹਾਲਸਾ ਸੁਤੜੀ ਸੋ ਸੋ ਡਿੱਠ ਤੈ ਸੁਪਨੇ ਹੋ ਖਨੀਐ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਪਰਖ ਮੁਖ ਅਲਾਵਣ ਥੋਥਰਾ ਮਨ ਮਜਾਹੂ ਲੱਖ ਤੁਧੈ ਦੂਰ ਨਾ ਸੋ ਪਿਰੀ ਪੌੜੀ ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਪਤਾਲ ਹੈ ਚੰਦ ਸੁਰ ਬਿਨਾਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਉਮਰਾਵ ਖਾਨ ਢਾਹੇ ਡੇਰੇ ਜਾਸੀ ਰੰਗ ਤੁੰਗ ਗਰੀਬ ਮਸਤ ਸਭ ਲੋਕ ਸਦਾਸੀ ਕਾਜੀ ਸੇਖ ਮਸਾਏ ਕਾ ਸਭੇ ਉੱਠ ਜਾਸੀ ਪੀਰ ਪਕਾਬਰ ਔਲੀਏ ਕੋ ਫਿਰ ਨਾ ਰਹਸੀ ਰੋਜਾ ਬਾਗ ਨਿਵਾਜ ਕਤੇਬ ਬਿਨ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਚਹਰਾਸੀ ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਆਵੇ ਜਾਸੀ ਨਿਹਚਲ ਸੱਚ ਖਦਾ

तिनके कोट सब पाप खिन पर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिनस जिन मन तन चित एकरा दिया। तिनका जन्म सफर्यो सब किया, करते जिन गुरबचनी सच पाखिया। ते तन जन बड़ पुरख पूरे, सो गुरमत हर जपौ बिखन तरे। सेवक जन सेवे ते परवान, जिन सेवया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चलावे प्यारे, होते वे चला। हमरे हाथ किछ

तेरा जन एक आद कोई, काम क्रोध लोहो विवर्जित हर पद चीने सोई रहो। रजगुण तम गुण सतगुण कहिए ए तेरी सम माया, चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया। तीर्थ वर्त नेम सुच संजम सदा रहे न कामा, कृष्णा और माया परम चूका चित्वते आत्म रामा। यह मंदिर दीपक

ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई, जात का कर्म न कर मूर्ख का वारा, इस गर्भ ते चले बहुत बिकारा, रहो चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे कड़े कुमारा, पंच तत्मिर देही का आकारा, कटबिद को करे विचारा, कहत नानक के जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई, पैरों महला तीजा, जोगी गृह पंडित पेख तारी, ए सूते अपने अहंकारी, माया मद माता रहा सोए, जागत रहे न मूसा कोई राओ, सो जागे जिस जस गुरु सतगुरु मिले, पंच दूत ओह बसकत करे, सो जागे सो तत् बिचारे, आ मरे अवरा नह मारे, सो जागे सो एको जाने, प्रकृत छोड़े तत् पछाने, चौवरना बिच जागे कोए, जम काले ते झूठे सोए, कहत नानक जन जागे सोए, ज्ञान अंजनता की नेत्री होए, पैरों महला तीजा, जाको राखे अपनी सरनाई।

जी पे मन मुख गवारा बिना में कैसे पारा पावे पारा आपे दात करे दैतार देवन हारे को जयकार नदर करे सतगुरु मिलाए नानक हृदय नाम बसाए भैरो महला तीजा नामे उदरे सब जितने लोह गुरमुख जिना परापत होए हर जीव अपनी कृपा करे गुरमुख नाम बढ़ाई दे रहाओ राम नाम जन प्रीत प्यार आप उदरे सब कुल उदाहरण हार नानक नाम परापत हो बिना में मनमुख जमपुर जाहे औखे बहे चोटा खाए आपे करता है आपे सोए नानक नाम परापत होए पैरो महला तीजा गोविंद प्रीक सन कादक उधारे राम नाम शब्द विचारे हर जियो अपनी कृपा तार गुरमुख नामे लगे प्यार रहो अंतर प्रीत भगत सच होई पूरे गुरमे लावा होई निज कर वसे सैठ सुवाए गुरमुख नाम बसे मन आए आपे वेखे वेखण हार नानक नाम रखो उर तार भैरो महला तीजा कलयुग मैं राम नाम उर तार बिना में माथे पावे छार राम नाम दुर्लभ है पाई गुर प्रसाद वसे मन आई रहो राम नाम जन पाले सोए गुर

कलयुग में भव कर्म कमावे ना रुत न कर्म थाए पावे। कलयुग में राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगा प्यार राव। तन मैं खोज करे मैं पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रब रेहा तै लोए। कलयुग में हर जियो एक, हो रुत न काई। नानक गुरमुख हिरदे राम नाम लिहो जमाई। पैरो महला तीजा कर दूजा, इको ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा मनमुख रोग ब्यापे, तृष्णा जले अधखाई। मर मर जमे ठौर न पावे, बिरथा जन्म गवाई। मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बजाई, हमे रोग जगत उपाया। बिन शब्दे रोग न जाई राव, सिमर सातर पड़े मन केते। बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रैगुण सभे रोग ब्यापे। ममता सुरत गवाई, इक आपे काढ लाए। प्रभे आपे गुर सेवा प्रभ लाए, हर कर नाम नदानो पाया। सुख वसिया मने आए, चौथे पदवी गुरमुख। चौथे पदवी गुरमुख वरते, तिन जगर वासा पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी, विचों आप गवाया। एक की सरकार एक जन, ब्रह्म विष्णु रुद्र अपाया। नानक ने चल साचा, एक वो ना वो मरे न जाया। पैरो महला तीजा, मनमुख दुबदा सदा है रोगी। रोगी सगल संसारा, गुरमुख बूझे रोग गवावे। गुरसबदी बिचारा, हर जियो सत संगत में लाए। नानक तिसनू दे वडाई, जो राम नाम चित लाए रहाओ। ममता कार सब रोग ब्यापे, तिन जमकी है सरकारा। गुरमुख प्राणी जम नीड़न आवे, जिन हर रख्या उर तारा। जिन हर का नाम न गुरमुख जाता, से जन जग माहे काया। गुर की सेवा कदे न कीनी, प्रथा जन्म गवाया। नानक से पूरे बड़पागी, सतगुर सेवा लाए। जो इच्छे सोई फल पावे, गुरबाणी सुख पाए। पैरो महला तीजा, दुख विच जमे दुख मरे, दुख में कार कमाए। गर्भ जोमी विच कदे न निकले, बिस्ता में समाए। त्रिग त्रिवग मनमुख जन्म गवाया, पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम न पाया राव, गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनु हर जी उलाए, नामे नाम मिले बढ़ियाए। जिसनु मन वसाए, सतगुर भेटे ता फल पाए। सच करनी सुख सार, तेजन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरे प्यार, तिन की रेन मिले ता मस्तक लाए। जिन सतगुर पूरा ते आया, नानक तिन की रेन पूरे भाग पाइये। जिनी राम नाम चित लाया। पैरो महला तीजा, शब्द विचारे सोजन साचा। जिनके हिरदे साचा सोई, सची भगत करे दिन राती। ता मन दुख न होई, भगत भगत कहे सब कोई। बिन सतगुर सेवे भगत न पाइये, पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहो। मनमुख मूल गवावे, लाभ मांगे दाहा लाभ कितों होई। जमकार सदा है हर से ऊपर, दूजे पाए पथ होई। बहले पेख पवे दिन राती, हम मैं रोग न जाई। पढ़ पढ़ लूजे बाद बखाने, मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेवै प्रमगत पावे, नाम मिले बढ़ियाई। नानक नाम बिना मन वस्या, दर साचे पत पाई। पैरो महला तीजा, मनमुख आसा नहीं उतरे। दूजे पाए खुआए, उधर के सैन न परिये। कभू तृष्णा अगन पचाए, सदा नंद राम नसराते। हृदय नाम दुबदा मन पागी, हर पीम सो तृप्ताते रहो। आपे पार ब्रह्म श्रेष्ठ जन साजी, सिर सर धंधे लाए। माया मोह किया।

हर आप निरंजन रंकार निरहारी हर जस तू मेले सो तुझ मिलसी जान नानक क्या यह जंत विचारी।

स्वामी सगल कटा का अंतर जामी राव सोए अचिंता जाग अचिंता जहां का प्रभु तू वर्तनता कार सुख वस्या बार सुख पाया ओ नानक गुरमंत्र दृढ़ाया।

जगत तराया भैरो महला पंजवा बन मह पेक्यो तृण मह पेक्यो ग्रह पेक्यो उदासाय दंड धार जटा धार पेक्यो वर्त नेम तीर्थाए

खाने तो किस्त कहो दुराए अगा अगा बेअंत स्वामी न कीम कीम कीमाए जा नानक तिन के बल बल जाइए है जय घट प्रगटिया इस भैरो महला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिक संचे नित डरता फिरे है निकटे हर भेद न पाया बिन सतगुर सब मोही माया नेड़े नेड़े सब को कहे गुरमुख भेद।

सतज संतर जाए। बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्तक कर्म लिखिया, दिलाट सतगुर सेवे खुले कपाट। अंतर बार निकटे सोए, जा नानक आवे ना जावे कोए। पैरों महला पंजवा, जिस तू राखे तिस कौन मारे, सब तुझी अंतर सगल संसारे। ओट पाव चित्त वत प्राणी, सोवे जे करे अचोज बडाणी।

सुनता भी नेत्रा कहा कुपेखे ना बिना नर कही ना लेके बिन विद्या कहा कोई पंडित बिन अमरे कैसे राज मंडित बिन बुझे कहा मन ठहराना ना बिना सब जग बोराना बिन बैराग कहा बैरागी बिन हो त्याग कहा को त्यागी

जैसो हीरा निर्मल नाम, जास जप्त पूर्ण सब काम। रहाओ जाकी दृष्ट दुख डेरा ढाए, अमृत नाम शीतल मन गए। अनक भगत जाके चरण पूजारी, सगल मनो

निंदक सिर तरा पार ब्रह्म के भक्त निर्वैर सून सरे जो पूजे पैर आद पुरख निंदक भुलाया नानक किरत ना जाई मिटाया भैरो महला पंजवां।

सबते उत्तम हर हर काम राव। नाम हमारे मज्जन इसनान, नाम हमारे पूर्ण दान, नाम लैते सगल पवित, नाम जपत मेरे भाई मीत। नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे त्रिपत सुभोग, नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाके मन बसिया प्रभ एक। सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवे नाओ, भैरो महला पंजमा। निर्धन को तुम देवो तना, अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भक्त अपने को देवो नाम। सफल सेवा गोपाल, राय कर्ण करावन हार स्वामी।

आवे को तुम थान बैठावो, दास अपने को भक्ति लावो। नमाने को प्रभ दे तो मान, मूड मगद होए चतुर सुज्ञान। सगल भान का यो नस्या, जान अपने के हर मन बसे। पार ब्रह्म प्रभ सूख निदान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम। कार कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए। भैरो महला पंजवां, संत मंडल में हर मन बसे। संत मंडल में दुर्त सब नसे, संत मंडल में निर्मल रीत। संत संग होए एक प्रीत, संत मंडल तहा का नाओ। पार ब्रह्म केवल गुण गाओ राओ, संत मंडल में जन्म मरण रहे। संत मंडल में जम किचू न कहे, संत संग होए निर्मल वाणी। संत मंडल में है नाम अवकाणी, संत मंडल का नह चलासन। संत मंडल में पाप बनासन, संत मंडल में है निर्मल कथा। संत संग हो में दुख नसा, संत मंडल का नहीं विनाश। संत मंडल में हर गुणतास, संत मंडल

सुपर प्रभ कृपा करे ति सुपर ते काल पर हरे सदा सकाई हर हर नाम जिस चीत आवे ते सदा सुख होवे निकट न आवे ता कह जाम राव जाबे हो ना सो तब किने पाया कवन मूर्ते क्या प्रगटाया आपने मारा आप जी वाले अपने भगत को सदा प्रत पाले सब किस जानो तिसके हाथ रब मेरो नाथ को नाथ दुख भंजन ता कह नाओ सुख पावे तिसके गुण गाओ सोन स्वामी संत नरदास जियो प्राणा धन तुमरे पास एह जग तेरा सब तुझे त्याय कर कृपा नानक सुख पाए।

साध संग पाइये बड़ भागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहो बंधन मात पिता सुत बंता बंधन कर्म धर्म हो करता बंधन काटन हार मन बसे तो सुख पावे निज घर बसे सब जाचक प्रभ देवनहार गुण निदान बे अंत अपार जैसे

कहा सुच मैल मन को व्यापे हों में मैल कोट कर्म बंधन का मूल हर के भजन बिन व्यर्था पूल बिन काए बूझे नहीं भूख रोग जायता उतरे दुख काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया धन तन साध धन हर नाओ आठ पहर कीर्तन गुण गाओ धन हर भगत धन करने यार सर नानक प्रभ पुरख अपार। भैरो महला पंजवां।

अपने सेवको सदा प्रतिपारे भक्तजना के सास निहारे मानस के कहो केतक बात जमते राके देकर हाथ।

मंत सोवर भाग्य जिसना प्यार जिसके संग तरह संसार राव सोई ज्ञानी जय सिमरेक सूतन मंता जिस बुद्ध विवेक सो कुलवंता जय सिमरे स्वामी सो पतिवंता जे आप पचानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रैन त्याया टूटे बंधन पूरन आसा हर के चरण रिद माहे निवास।

लागे नाम सुनत जम दूर हो भागे नाम लैत सब दुखे नास नाम जपत हर चरण निवास निर्विघन भगत पज हर हर नाओ रस क्रस हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमरत किच चाक ना जोहे हर सिमर देत देव ना पोहे हर सिमरत मोह मान ना बदे हर सिमरत गर्भ जो ना रुदय हर सिमरन के सगली बेला हर सिमरन बोह माहे अकेला जात अजात जपे जन कोए जो जापे तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानको प्रभ कृपा धार सा सास हर देहो चितार भैरो महला पंजवा आप सास्त आपे वेद आपे घट घट जाने भेद जो स्वरूप जाके सब वत करण कारण पूर्ण समरत प्रभ की ओट गहो मन मेरे चन कमल गुरमुख अरादो दुश्मन दुख न आवे नेरे रहो आपे वन त्रिण त्रिपवन सार जाके सूत परोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्वाणी आपे भोगी जद गद पेको तत् तत् सोए तिस बिन दूजा नाही कोए सागर तरिये नाम कै रंग गुण गावे नानक साध संग मुक्त भुगत जुगत जा वच जाके उना नाही किच जन जा ताके कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न नानक दास सही जन धन भैरो महला पंजवां भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भये बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस कहे किन माए पार ब्रह्म वस्या मन आए राम राम संत सदा सहाय घर बार नाले परमेसर राव रहया पूर्ण सब टाए रहाओ धन माल जो बन जुगत गोपाल जी प्राणित सुख प्रतपाल अपने दास को दे रखे हाथ निमक ना छोड़े साध ही साथ हरसा प्रीतम अब न कोय सारस माले साचा सोए मात पिता सुत बंद नारायण आजुगाद भगत गुण गायन

मार्ग अंत काल पुछताई। तीर्थ पर में रोग न छूट से पड़या बाद विवाद पया। दुविधा रोग सो अधिक वडेरा माया का मोहताज पया। गुरमुख साचा शब्द चलाए मन साचा तिस रोग गया। नानक अर्जन अंध निर्मल इनको कर्म निशान पया। राओ भैरो महला पंतीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भैरो महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिन करते एक चल तो पाया अंधन हानि बन शब्द सुनाया। मन मुख भूले गुरमुख बुझाया कारण करता करदा आया। गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान ओ कबू ना छोडो हर का नाम। राओ पिता प्रहलाद पढ़न पटाया लै पाटी पादे कह आया।

गए मिले सजाए। कहे नानक सब को करे कराया से परवान जिनी, हर स्यो चित लाया भगता का अंगीकार करदा आया। करते अपना रूप दिखाया भैरो महला तीजा,

हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय तेस सब ही जुगता। जिस नाम हृदय तिन नौ निद पाई,

तिस तख्त निवास जिस नाम हृदय सो साचा साहो नामहीन नाही पत वे साहो जिस नाम हृदय सो सब मैं जाता जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता जिस नाम हृदय सो सब ते उच्चा ना बिना ब्रह्म जो नी मूचा जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा

नखे गोपाल, आवण जान रहे सुख पाया, ओ नानक तत् तत् मिलाया। भैरो महला पंजवा, कोट बिजन कीने अवतार, कोट ब्रह्मांड जा

चरण मझार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा, कोट विसार अवना दूजा, कोट महिमा जाके निर्मल हंस, कोट उस्तत जाके करत ब्रह मंस, कोट बालो पत निमक माए, कोट गुणा तेरे गण ना जाए, कोट ज्ञानी कथे ज्ञान, कोट ध्यानी तत्त्यान, कोट तपीसर तपी करते कोट मनीसर, मोन में रहते अवगत नाथ गोचर स्वामी, पूर रहया कट अंतर जामी, जत का देखो तेरे वासा, नानको गुर कियो परगासा, पैरो महला पंजवा, सत गुरमुख को कीनो दान, अमोल रत्न हर दीनो नाम, सहज बनोद चोज अनंता, नानको प्रभ मिलियो अचिंता को नानक, कीर्त हर साची बौर बौर, तेस संग मन राची रहो, अचिंत हमारे भोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ, अचिंत हमारे शब्द उतार, अचिंत हमारे परे भंडार, अचिंत हमारे आर्ज पूरे, अचिंत हमारे लते बसूरे, अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही एहो मान वास कीता, अचिंत प्रभु हम किया दिलासा, अचिंत हमारी पूर्णासा, अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हमको गुर दिनो मंतो, अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिठे अंधेर, चिंतो ही मन कीर्तन मिटा, चिंतो ही प्रभ घर का डेटा, अचिंत मिटे हुआ सगलो भरमा, अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा, अचिंत मारे अनहत बाजे, अचिंत मारे गोविंद गाजे, अचिंत मारे मन पतियाना, नैचल धनी अचिंत पछाना, चिंतो पुजया सगल विवेका, अचिंत चरी हद हर हर टेका।

सेख कह कबीर हो पया दीवाना। बिस्मिल तामच परम कदूरी भागले पंचे होए सबूरी हिंदू तुरका साहिब।

तोरो न पाती पूजो न देवा राम भक्त बिन नैपल सेवा सतगुर पूजो सदा सद मनावो ऐसा सेवा।

जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बानी, भज लेहरे मन सारग पानी। अब ना भजस भजस कब पाई, आवे अंत न भजया जाई, जो किछ कर है सोई अब सार, फिर पछता हो न पावो पार।

ठहराओ। मूल द्वारे बंध अबंध रव ऊपर गह राख्या चंद, पश्चिम द्वारे सूरज तपे मेर डंड सिर ऊपर बसे।

सो सुरतान जो दोय सरतान बाहर जाता पीतर आने गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान छत्र सिर तरह।

कहत कबीर हौ कहो पुकार समझ देख साखत गवार। दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले।

रह आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरह दुख भंजना रहाओ। जब लग सिंह है बन माहे।

जाए केवल राम रहोह लिव लाए असत्तर सै सलार है जाके सवा लाख पैका पर ताके सेख जो कहिए कोट अठासी छपन कोट जाके खेल खासी मो गरीब को की को गुजरावे मजलस दूर महल को पावे रहाओ तैतीस करोड़ी

दिल खल हल जाके जर्द रूबानी छोड़ कतेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है ले ओई अपना किया आपे सोई तुम दाते हम सदा भिखारी दियो जवाब होए बजगारी दासू कबीर तेरी पनह समाना पिस्त नजीक राख रहमाना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैखुंट है कहां रहाओ आप आपका मरम न जाना बातन ही बैकुंठ बखाना जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परल पगारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कह कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठे आहे क्यों लीजे गंठ बंका पाई दोवर कोट अर तेवर खाई रहाओ पांच पचीस

रहे कट पीतर एहो कड लियो ना जाई। प्रेम प्लीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया भ्रम अगन सहजे पर जाली एक कह चोट सिजाया। सत संतोख लै लरने लागा तेरो दोए दरवाजा साध संगत अर गुर की कृपा ते पकरियो गढ़ को राजा। भगवत पीर सकत सिमरन की कटी काल कै फांसी दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अभिनासी। गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर। मन न डिगे तन काहे को डराए चरण कमल।

कह कबीर कौ संग ना साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। भैरो कबीर ज्यो अष्टपदी कर

अनहद शब्द होत चुनकार, ज्यो पौड़े प्रभ श्री गोपाल। खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रय अस्थान तीन त्रय खंडा। अगम गोचर रहया सब अंत, पार न पावे को धरनी तर मंत। कदली पोहप धूप परगास, राज पंकज महलियो निवास। द्वादस दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमला कंत। उर्द अर्ध उर्द मुख लागो कास, सुन मंडल मह कर परगास। ऊहा सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंग सो जाको है जाप, जाको लपत न होए पुन अर पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं छाम, अवर न पाइये गुर की साम। टारी न टरे आवे न जाए, सुन सहज मह रहयो समाए। मन मदे जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए। जोत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर कबिलास। दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचो तो केवल राम, आन देव सो नाही काम रहाओ। कोट चंद्र में करह चक्राक, सुर तेतीस जे वह पाक। नवग्रह कोट ठाडे दरबार, धर्म कोट जाके प्रतिहार। पवन कोट चौबारे फिर है, बासक कोट सेज बिस्थर है। समुंद कोट जाके पानी हार, रोमावल कोट अठारह पार। कोट कमेर पर है पंडार, कोटिक लिखमी करे सीगार। कोटिक

गंधर्व कोट करह जयकार, विद्या कोट सबै गुण कहे, तव पार ब्रह्म का अंत न लह। बावन कोट जाके रोमावली, रावण सेना तह ते छली। सहस कोट बहु कहत पुराण, दुर्योधन का मिथ्या मान। कंद्रप कोट जाके लवे न तर है, अंतर अंतर समंसा हर है। कह कबीर सुन।

हर हर त्याय रहाओ। मिथ्या जिह्वा अवरे काम निर्वाण पद इक हर को नाम असंख कोट अन पूजा करी एक न पूजस नामे हरि। प्रणवे नाम देओ इहो करना अनंत रूप तेरे नारायणा पर तन पर दारा पर हरि ताके निकट बसे नर हरि।

सोयना कटोरी अमृत भरी लै नामे हर आगे धरी एक भगत मेरे हृदय बसै नामे देख नारायण हसै।

रच रच ताको करो सिगार, भले निंदो लोग मन तन, राम प्यारे जोग रहाओ। बाद विवाद कहूं स्यो न कीजै, रसना राम रसायन पीजै। अब जिए जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्तत निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेटल सोई।

नर नारी सो काल तंदा जैसे सिंबल देख सुआ बिगसाना अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कर अग्ने माहे जलत रहे मिटवे कब नाहे रहाओ। हर की भगत न देखे जाए मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूल हो पुला आवे जाए अमृत डार।

दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया करसह औद कनेरी गेर तर जल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़क काल के पै को प्यो मोहे बताओ जो तोहे राखे पीत पिताम्बर त्रिपवन तणी थंब माहे हर पाखे हर नाखस जिन नखे बिदार्यो सुर नर किए सनाथा कह नाम दियो हम नर हर त्याव।

सुनी अजुन आयो त्रिपवन तणी। पाखंतन बाज बजायला गरुड़ चढ़े गोविंद आयला। अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल। कह तरण एकोडी करो।

जाओ गुरुदेव ना दह दस तावै जाओ गुरुदेव पंच ते दूर जाओ गुरुदेव तमर भो चूर जाओ गुरुदेव ता अमृत बानी जाओ गुरुदेव ता अकथ कहानी जाओ गुरुदेव ता अमृत देहे जाओ गुरुदेव नाम जप ले है जाओ गुरुदेव।

जौ गुरुदेव सदा बैरागी, जौ गुरुदेव पर निंदा त्यागी, जौ गुरुदेव बुरा भला एक, जौ गुरुदेव लिलाटे लेख, जौ गुरुदेव कंध नहीं हिरे, जौ गुरुदेव देहरा फिरे, जौ गुरुदेव ता छापर छाई, जौ गुरुदेव सहज निकसाई, जो गुरुदेव ता अठसठ नाया, जो गुरुदेव तीन तीन चक्र लगाया, जो गुरुदेव द्वादश सेवा, जो गुरुदेव

होता नाम जन्म ना मरा। जो गुरुदेव तप अवजल तरे, जो गुरुदेव ता जन्म न मरे, जो गुरुदेव अठसठ अठ दस व्यवहार, जो गुरुदेव अठारह पार, बिन गुरुदेव

पत पयाला चमर कोस का मंदर तेरा एहबिद बने गोपाला छपन कोट का पेहन तेरा सोलह सहस इजारा पार अठारह मुदगर तेरा सह नक सब संसारा देही महजद मन मौलाना सहज निवाज गुज

बिन बूझे सब घड़िया संबंध जेते जिए लिखी सरकार करनी ऊपर होवग सार हुकम कर है मूरख गावार नानक साचे के सिफत भंडार बसंत महला तीजा तीजा वस्त्र

नाथ मत बिस्रस रे मन राम बोल अपरंपर अगम अगोचर गुरमुख हर आप तुलाए अतुल तोल रहाओ गुर चरण सरे वह गुर सिख तोर गुर सेव तरे भज।

फल नाम प्राप्त गुर तुस दे, कहो नानक पावै विरले के। बसंत महला तीजा, एक तुका साहिब पावै सेवक सेवा करै, जीवत मरै सब कुल उदरै। तेरी भगत न छोड़ो क्या को हसै, साच नाम मेरा हृदय वसै। रहाओ जैसे माया मोहे प्राणी गलत रहै, तैसे संत जन राम नाम रवत रहै। मैं मूर्ख मुग्ध ऊपर

स्वामी पंडिता तुम देहमति किन विद पावो प्राणपति रहाओ। पीतर अगन बनास्पत मौली सागर पंडय पाया चंद सूरज दोय कर ही पीतर ऐसा ज्ञान न पाया। राम रवंता जानिए इक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा धन संग्रहे कहे।

कर कृपा हर भक्त दड़ाए आन दिन हर गुण गाए। मत भूलो रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाइए नाम हरी रहाओ। बिन भक्ति नहीं सतगुर पाइए बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाइए कर मिले हर नाम हरी। घट घट गुप्त उपाय वेखे प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करह सो हर रंग पीने हर जल अमृत ना मना। जिनको तख्त मिले वड्याई गुरमुख से प्रदान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थिए। बसंत महला तीजा घर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद। महारुति मह सद बसंत जित हरिया सब जीय जंत क्या हो आखा किरम जंत। तेरा किने न पाया आद अंत तै साहिब की।

आपे करता करे कराए जोत सुपावे तिसे खवाए नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे। भिख्या की बासना मन है करे अपना पाना आप करे बसंत महला तीजा। राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए जो पावे त्यो राख्या सोए गुर गोपाल मेरे मन पाए रह न सको दर्शन देखे बिन सहज मिलो गुर मेल मिलाए रहाओ। एह मन लोभी लोभ लुभाना राम विसार बहुर पछताना बिछरत मिलाए गुर सेव रांगे हर नाम दियो मस्तक वड भागे। पौन पानी की एह देह सरीरा हमे रोग खटेन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर कृपा गुर रोग गवाया चार नदिया अग्नि तन चारे तृष्णा जलत जले अहंकारे गुर राखे वड भागी तारे जन नानक उर हर अमृत तारे बसंत महला तीजा। हर सेवे सो हर का लोग साच सहज कदे ना होवे सोग मनमुख मुए नाही हर मन माहे मर मर जम्हे भी मर जाहे। से जन जीवे जिन हर मन माहे साच समाले साच समाहे रहाओ। हर ना सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पवे सिर पावे तूर हर आपे जन लिए लाए तिन सदा सुख है तिल ना तमाए।

सोई करे जे हर जियो पावे सदा सुख शरीर पाणे चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुपाए नानक नाम वसै मन आए। बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुर

जो सुभाए। आंदन कीर्तन करह दिन रात, सतगुर गवाई विचो झूठ परांत। पर पंच वेख रहया बिस्माद, गुरमुख पाइये नाम प्रसाद। आपे करता सब रस भोग, जो किछ करे सो

सफल जन्म इस जग में आया, साच नाम सहज समाया। गुरमुख कार करो लिव लाए, हर नाम से वो विचो आप गवा।

निर्मल निर्मल सच सोए। जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साच सबद प्रभ एक संयाण। हर रस चाखे ता सुध होए, नानक नाम रते सच सोए। बसंत महला तीजा। नाम रते कुला का करह उदार, साची बाणी नाम प्यार। मनमुख भूले काहे आए, नाम हो भूले जन्म गवाए। जीवत मरे मर मरण सवारे, गुर के शब्द साच उर तारे रहाओ। गुरमुख सच भोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद

दर साचे सच सोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपुल सच्चा सच सोए, होर सब भूल है दूजे पत खोए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी। बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम भुलाई, माया मोहे बहुत दुख पाई, मनुख अंधे ठौर न पाई, विस्ता का कीड़ा विस्ता माहे समाई। हुक्म मने सो जन परवान, गुर कै शब्द नाम नीसान रहाओ, साच रते जिन तुर लिख पाया, हर का नाम सदा मन पाया, सदगुर की बाणी सदा सुख होए, ज्योति ज्योत मिलाए सोए।

कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप वसै मन आए नहचल मत सदा मन तीर हर गुण गावे गुणी गहीर नाम हो भूले मरे बिख खाए वृथा जन्म फिर आवे जाए रहाओ बहु भेख करे मन शांत न होए बहु अभिमान अपनी पत खोए सेवड भागी जिन शब्द पछाणिया बाहर जादा घर में आणिया घर में वस्त अगम अपारा गुरमत खोजे शब्द बीचारा नाम नव निध पाई कर ही माहे सदा रंग राते सच समाहे आप करे किच करण न जाए आपे पावे लय मिलाए तिसते नेड़े नाही को दूर नानक नाम रहया परपूर बसंत महला तीजा गुर सब्दी हर चेत सुभाए राम नाम रस रहे अगाए कोट कुटंतर के पाप जल जाहे जीवत मरह हर नाम समाहे हर की दात हर जियो जाने गुर के शब्द एह मन मौल्या हर गुण दाता नाम वखाणे रहाओ भगवै वेश भ्रम मुक्त न होए बहो संजम शांत न पावे कोए गुरमत नाम प्राप्त होए वडभागी हर पावे सोए कल मैं राम नाम वडे आई गुरपुरे ते पाया जाई नाम रते सदा सुख पाई बिन नामे होमे जल जाई वडभागी हर नाम बीचारा छूटे राम नाम दुख सारा।

अनमोल्या पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोबिंद एको एक सब आख वखाणे हुकम बुझै ता एको जाने कहत नानक होमे कहे न कोए आखण वेखण सब साहिब ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुरु भेटै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लेहो मिलाए गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए फल है फुलिए राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखे उरतारे राम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए फल है फुलिए राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखे उरतारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाए पूरे भाग हर भगत कराए इस मन को बसंत की लगे ना सोए एहो मन जलिया दूजे दोए रहाओ एह मन धंदे बांधा कर्म कमाए माया मूठा सदा बिल लाए एह मन छूटे जा सतगुर भेटे जम काल की फिर आवे ना फेटे एह मन छूटा गुर लिया छड़ाए नानक माया मोह शब्द जलाए बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए एह जीए जंत फूले हर चित लाए इन बिद एह मन हरिया होए हर हर नाम जपै दिन राती गुरमुख होमै कड्डै तोए रहाओ सतगुर बाणी शब्द सुनाए एह जग हरिया

वचन तेरा हरिया होवे, इक हर नामा फल पाए रहाओ। गुर राखे से उबरे पाई, हर रस अमृत पी आए, विचो हमें दुख उठ गया पाई, सुख उठा मन आए। तुर आपे जिनानो

मन मुख फिर फिर होमे मुए काल दैत संघारे जमपुर गए गुरमुख हर हर हर लिव लागे जन्म मरण दो दुख पागे भक्त जना को हर कृपा तारी गुरु नानक तूठा।

सत खोज परे तब पकरे तन साबत रास उबरया। पाखंड परम उपाव कर था के रिद अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पत पाया अज्ञान अंधेर गवाया। जगन्नाथ जगदीश गुसाई कर कृपा साध मिलावे नानक शांत होवे मन अंतर नित हृदय हर गुण गावे। बसंत महला चौथा हिंडोल तुम वड पुरख वड अगम गुसाई हम किरे किरम तुम नचे हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा गुर सतगुर चरण हम बंचे। गोविंद जियो सत्संगत मेल कर कृपचे जन्म जन्म के किलविख मल परया मिल संगत कर प्रभ हंचे रहाओ। तुमरा जन जात अविजाता हर जप्यो पतित पविछे हर कियो सगल पवंते ऊपर हर सोबा हर प्रभ दिंचे। जात अजात कोई प्रभ त्यावे सब पूरे मानस तिंचे। से तन वडे वड पूरे हर जन हर से तन वडे वड पूरे हर जन जिन हर तार्यो हर उर्छे। हम डीडे डीम बहुत अत पारी हर तार कृपा प्रभ मिलछे। जन नानक गुर पाया हर तूठे हम किए पतित पविछे। बसंत हिंडोल महला चौथा मेरा इक खिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गीते जो बारिक रसक परयो थान माता धन काडे बिलल बली दे। गोविंद जियो मेरे मन तन राम हर बीते वडे।

जन जप्यो नाम हर निरंजन नर हर उपदेश गुरु हर प्रीते जनम जनम की हमें मल निकसी हर अमृत हर जल नीदे हमरे कर्म न बिछरो ठाकुर तुम प्याज रखो अपनी दे हर पावे सुन बिनो बेंती जन नानक सरन पवी दे। बसंत हिंडोल महला चौथा मन खिन खिन परम परम बहुतावे तिल कर नहीं वासा पाईए गुर अंकस शबद दारू सिर तारियो कर मंदर आण वसाईए गोबिंद जियो सत्संगत मेल हर त्याईए होमे रोग गया सुख पाया हर सहज समाध लगाईए रहाओ कर रतन लाल बहुमानक लादे मन प्रम्या लह न सकाईए जो उड़ा कूप गोहज खिन काडे त्यो सतगुर वस्त लहाईए जिन ऐसा सतगुर साध न पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाईए जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाईए मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाईए जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाईए। बसंत हिंडोल महला चौथा आवण जान पया दुख बिख्या देह मनुख सुंजी सुंज राम नाम खिन पल नहीं चेत्या जम पकरे नाल सुलंज गोबिंद जियो बिख होमे ममता मुंज सत्संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस पुंज रहाओ सत्संगत साध दया कर मिलो शरणागत साधु हुंज हम डुबदे पाथर काढ़ लिहो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज हर उस्तत तारो रिद अंतर स्वामी सत्संगत मिल बुद्ध लंज हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटो कुम वंज जिनके पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवो हर लंज जन नानक मंतन अनद प्या है गुर मंत्र दियो हर पंज। बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सेवो कर नमस्कार आज हमारे मंगल चार आज हमारे महा आनंद चिंत लथी पेटे

चंद देख बिगसै कोलार माता बारिक देख आनंद त्यो हर जन जीवे जप गोबिंद सिंह रुचै सद भोजन मास रण देख सूरे चित उलास किरपन को अत धन प्यार हर जन को हर हर आधार सर्व रंग एक रंग माहे सर्व

साध संगत त्यो होमे छूट, जैसी दासे तीर मीर, तैसे उदारन गुरह पीर। तुम दाते प्रभ देन हार, निमख निख निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ। जिसे प्रापत साध संग, तिस जन लागा पा भ्रम रंग, ते बंधन ते पय मुक्त भगत अराध्य जोग जुगत। नेत्र संतो

जिसकी गतमित कहीं न जाए, नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मंतन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस। केलव काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद प्रसंत बना, चन कमल हृदय उतारे, सदा सदा हर जस सुना रहा। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे नाथ प्रभ तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभ लह निस्तार। भव खंडन दुख नाश देव, सुर नर मुंजन ताकि सेव, तरण आकाश जाकी कला माहे, तेरा दिया सब जंत खाहे, अंतर जामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देव।

गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछ नाही फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना सो सदा संग रहाओ। संत जनी की उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भक्त हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कारज सार, चन कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ दीनो दान, तेरा संत जना की बाछो तूर, जप नानक स्वामी साध हजूर। बसंत महला पंजवा, सच परमेसर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाके सिमरन नहीं संताप, खसम त्याई इक मन इक पाए, गुर पूरे की सदा सरनाई, साचे साहेब रख्या कंठ लाए रहाओ, अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दसंतर रहे ताए, किरत ओना का मिटह ना है, ओए अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच न सकत सकोए, प्रभ दास रखे कर जतन आप, अखंड पूरन जाको प्रताप, गुण गोविंद नित, गुण गोविंद नित, रसन गाए, नानक जीवे हर

अर्थ पूरन काम, जप जीवै नानक राम नाम। सार उत सुहावी जित हर चित आवै, बिन सतगुर दी जय बिलन लाती, साकत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पै विनसे निरपै पद पाया, गुरमिल नानक खसम ध्याया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। आस्त सिद्ध नव निध देहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीव है तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रभो गोबिंद रवण जोग, जित रव्या सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नजर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख तनी, मेरा गुण अवगुण न बिचारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया। बसंत महला पंजवां, खिल विख विनसे गाय गुना, आन दिन उपजी सहज तुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित नित रातो राम रंग रहाओ। कर कृपा प्रत्येक गोपाल लड़।

रखे अपने कर थाप। शांत सहज ग्रह सद बसंत, गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत। रहाओ शोक संताप कटे प्रभ आप, गुर अपने को नित नित जाप। जो जन तेरा जपे नाओ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ। नानक भक्ता भली रीत, सुखदाता जप दे नित नीत। बसंत महला पंजवां, हुकम कर कीने निहाल। अपने सेवक को पया दयाल, गुर पूरे सब पूरा किया। अमृत नाम रिद मह दिया रहाओ। करम धरम मेरा कछ ना बिचार्यो, बहा पकर पव जल निस्तार्यो। प्रभ काट मैल निर्मल करे, गुरपुरे की सरनी परे। आप कर है आप करने हारे, कर कृपा नानक उधारे। बसंत

पागे। तुम मिलो प्रभ सभागे, हर चेत मन मेरे रहाओ। सगन बास फूले इक रहे, सूख कंटूले। बसंत रुत आई पर फुलता रहे। अब कलू आयो रे इक नाम बोगो बोगो। आन रुत नाही नाही मत परम भूलो भूलो। गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा। मन रुत राम रे गुण कहे नानक। हर हरे हर हरे बसंत महला पंजवा। कर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। होए इकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख वैसो सभा विशाए। इन विद पासा ढालो बीर, गुरमुख नाम जबहो दिन राती। अंतकाल नह लागे पीर रहाओ। करम धर्म तुम चौपड़ साझो सत, करो तुम सारी। काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी। उठ स्नान करो प्रभाते, सोए हर आराधे। बिखड़े दाओ लंगावे मेरा, सतगुर सुख सहज सेती कर जाते। हर आपे खेलै आपे देखै, हर आपे रचन रचाया। जन नानक गुरमुख जो नर खेलै, सो जन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जाने। और ना दूजा जाने, जिसनो कृपा कर है मेरे प्यारे। सोई तुझे पछाणे, तेरे भक्तां को बलिहार।

नो, तू रंग तरता, तू वरदाता, तू वरदाना और नहीं को दूजा, तू समरथ स्वामी मेरा, हो क्या जाना तेरी पूजा। तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरे तेरा है पाणा, कहो नानक तह पहया द्वारे, रख ले वो मुकद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजमा, मूल न बूझे आप न सूझे, परम व्यापी अहंगमनी, पिता पार ब्रह्म प्रभ तनी, मोहे निस्तारो निर्गुनी, रहाओ उपत परलो प्रभ ते होवे, एह बिचारी हर जनी। नाम प्रभु के जो रंग राते, कलम है सुखिए से गनी, अवर उपाओ न

सब उत्तम किस आखो हीना हर भक्ति सच नाम पतीना रहाओ औखदकारी थाकी बहतेरे क्यों दुख चुके बिन गुर मेरे बिन हर भक्ति दुख कनेरे दुख सुख दाते ठाकुर मेरे रोग वडो क्यों बांधो तीरा रोग बुझे सो काटे पीरा मैं अवगण मन माहे शरीरा ढूंढत खोजत गुर मेले वीरा गुर का शब्द दारू हर नाओ जो तू राखे तिवे रहाओ जग रोगी कह देख दिखाओ हर निर्मायल निर्मल नाओ कर मह कर कर मह कर जो देख दिखावे गुर महली सो महल बुलावे मन मन मह मनुआ चित मह चीता ऐसे हर के लोग अतीता हर्ख सोगते रह निरासा अमृत चाख हर नाम निवासा आप छान रह लिवलागा जन्म जीत गुरमत दुख पागा गुर दिया सच अमृत पीवो सहज मरो जीवत ही जीवो अपनो कर राखो गुर पावे तुमरो होए सो तुझे समावे भोगी को दुख रोग ब्यापे घट घट रव रहया प्रभ जापे सुख दुख हीते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता वसंत महला पहला इक तुखिया मत भसम अंधले गर्भ जाहे जिन विद नागे जोग नाहे मूड़े काहे बिसार्यो ते राम नाम अंतकाल तेरो आवे काम रहाओ गुर पूछ तुम करो विचार जह देखो थै सारंग पाण क्या हो आखा जा कछु नाहे जात पत सब तेरा नाए काहे माल दर्ब देख गर्भ जाहे चलती बार तेरो कछु नाहे पंच मार चित रखो ताए जोग जुगत की एह पाए हमें पैखड़ तेरे मने माहे हर न चेते मुड़े मुक्त जाहे मत हर विसरे जम बस पाहे अंतकाल मुड़े चोट खाहे गुर शब्द विचारे आप जाए साच जोग मन वसे आए जिन जियो पिंड दिता तिस चेते नाहे मड़ी मसानी मुड़े जोग नाहे गुण नानक बोले पली बाण तुम हो सुजाखे लेहो पछाण बसंत महला पहला दुविधा दुर्मत अंधली कार मनमुख पर मैं मज गुबार मन अंधला अंधली मत लागे गुर करनी बिन परम न पागे रहाओ मनमुख अंधले गुरमत न पाई पशु पय अभिमान न जाई लख चौरासी जंतु पाए मेरे ठाकुर पाणे सिरज समाए सगली भूले नहीं शब्द अचार सो समझे जिस गुर करतार गुर के चाकर ठाकुर पाणे बक्स लिए नाही जमकाणे जिनके हृदय एको पाया आपे मेल परम चुकाया बेहमोताज बेअंत अपारा सच पतीजय करने हारा।

पवरा बासले तरवर फूले वन हरे रहाओ। आपे कवला कंत आप आपे रावे शब्द थाप आपे बछरू गौ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करणी करणहार आपे गुरमुख कर बीचार तू कर कर देखा करणहार ज्योत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकल निरंजन परम हीर तू आपे करता करण जोग नह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम सोआए बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाव सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चौह हथ दिए एका एका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सख्त तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिकदारी धरती देग मिले इक बेरा भाग तेरा भंडारी ना साबूर होवे फिर मंगे नारद करे खुआरी लब अंधेरा बंदी खाना औगन पैर लोहारी पूंजी मार पवे नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा ऐसी नजर तुम्हारी आद पुरखो अल्हो कहिए सिंखा आई बारी देवल देवत्या कर लागा ऐसी कीरत चाली पूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सबना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंट सलाम करेंगे कर कर सिफत तुम्हारी तीरथ सिमरत पुन दान किछ लाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी समाली बसंत हिंडोल कर दूजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वस्या खिन पल थिर न रहाई अनेक पाव चतन कर थाके बारंग बार परमाई मेरे ठाकुर बालक इत कर आण सतगुर मिले त पूरा पाईए भज राम नाम निशान रहाओ ओहो मृतक मड़ा सरीक है सब जग जित राम नाम नहीं वसया राम नाम गुर उदक चोआया फिर हरिया होआ रसया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजा इक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल पय है जो कृष्ण बिदर कर आया मिल्यो सुदामा भावनी तार सब किच आगे दालद पंज समाया राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाई से जे सब साकत करे बिखीली इक रती तिल ना कटाई जन की उस्तत है राम नामा दहदस सोबा पाई निंदक साकत खव ना सके तिल अपने कर लुकी लाई जन को जन मिल सोबा पावे गुण मह गुण पर गासा मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारे जो होवे दासन दासा आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जह समावा बसंत महला पंचवा कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजामल उदरिया कह एक बार बाल्मीकि होआ साध संग ध्रुव कोह मिलिया हर निसंग तेरा संता जाचो चरण रेन ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ गण का उदरी हर कहे तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख प्रिप सुदामे दालद पंज रेमन तू भी भज गोविंद बदक उधार्यो खम प्रहार कुबिजा उदरी अंगुष्ट तार बिदर उधार्यो दासत पाए रेमन तू भी हर त्याए प्रहलाद रखी हर पैज आप वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रेमन सेव तू पर है पार तन्ने सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी को गुर कियो प्रगास रेमन तू भी हो हे दास जय देव त्याग्यो अहमेव नाई उदर्यो सैन सेव मन डीग न डोले कहूं जाए मन तू भी तरसे शरण पाए जय
जय अनुग्रह ठाकुर कियो आप ते सैं लीने भगत राख तिन का गुण अवगुण न बिचारियो कोए एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नामदेव हर जियो बसे संग रविदास त्याय प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद अनुरूप रविदास त्याय प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवा अनेक जन्म प्रमेय जोन माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भक्त बिहुना खंड खंड बिन बूजे जम देत दंड गोविंद भजो मेरे सदा मीत साच सबद कर सदा प्रीत रहाओ संतोख न आवत कहूं काज तुम बांदर सब माया साज पाप करंतो नह संगाए बिख का माता आवै जाए हाव हाव करत बदे विकार मोह लोभ डूबो संसार काम क्रोध मन वस किया सुपने नाम न हर लिया कभी राजा कब मगन हार दुख सुख बादो संसार मन उदरण का साज नाहे पाप बंधन नित पोत जाहे ईठ मीत को सखा

कर कृपा लड़ले हो लाए नानक दास प्रभ की शरणाए बसंत की वार महल्ला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम ते आए के हो हरिया पाई किरम लखन ते पाई है एहो रत सहाई वाण त्रिण त्रि पवन मौल्या अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई पंजे बदे महाबली